Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

0: एक हफ्ता हो गया है इस गाने को लूप पे सुनते हुए। वे जुनून फ्रॉम आवारा पंटू, इमरान हाशमी का माइंडस टच और मिथुन का मैजिक। और जितना गाना सुना उतना ही लोगों को भी सुना, उनके कमेंट्स, उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनका सोशल मीडिया। और मुझे एक बात समझ में आई, हम शायद वे जुनून को सुन ही नहीं रहे, हम उसकी कंपैरिजन अपनी यादों से कर रहे हैं। आवारापन की असली लेगेसी फिल्म नहीं थी, उसका म्यूजिक था और उनके साथ जुड़ी हमारी यादें। और ये कभी इम्पार्शियल नहीं होती, पर अब कई लोग कह रहे हैं कि इसमें सैयारा की झलक है, हो सकता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, जब हम किसी नए गाने को सुनते हैं पुराने दिल के साथ सुनते हैं, उससे वही महसूस करना चाहते हैं जो 20 साल पहले किया था, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं है। हर सीक्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली फिल्म नहीं होती, उससे जुड़ी हुई यादें होती हैं और उनसे जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और अब देखते हैं क्या वक्त वे जुनून के साथ भी वही करता है जो उसने तो फिर आओ के साथ किया था। अनफॉर्चुनेटली अगला गाना आपके इमोशंस को उतना नहीं टटोलेगा, क्योंकि इसका नाम है चटनी। ये है फ्रॉम धमाल 4 एंड इस हफ्ते है नंबर 9 पर।
1: नंबर 9।

0: समटाइम्स एक फिल्म अच्छी होती है, समटाइम्स एक एक्टर कमाल का होता है, लेकिन समटाइम्स किसी सीन को हमारे दिल में अगर कोई परमानेंट बनाता है तो वो होता है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। एंड रहमान डकैत को देखने के लिए हम सब बेचैन थे, और इसलिए इस हफ्ते मैंने देखी इक्का। सनी पाजी बैक एज अ लॉयर एंड अक्षय खन्ना बैक एज रहमान डकैत। इट वॉज वियर्ड वॉचिंग हिम प्ले समथिंग सो सिमिलर। लेकिन एक और बात है जो मुझे बहुत ज्यादा खटकी, कुछ सीन्स सच में बहुत अच्छे थे लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक ने उन्हें वो एहसास ही नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। तब मुझे समझ आया बैकग्राउंड्स को सिर्फ म्यूजिक नहीं होता, वो इमोशंस का डायरेक्टर होता है। अगर यकीन नहीं आता तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये रहना है तेरे दिल में का वो आइकॉनिक सीन है जहां माधवन दिया मिर्जा से अपने प्यार का इजहार करते हैं समंदर के सामने। पहले मैं आपको वही डायलॉग सुनाऊंगा लेकिन टोटली गलत बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ।
1: एक लड़की देखी बिल्कुल बिजली की तरह, वन फ्लैश, एक चमक और रहा। मैं अपना दिल खो बैठा। मुझे लगता है मुझे इस लड़की से बेहद प्यार हो गया है। बस अब एक ही तमन्ना है, रहना है उसके दिल में।
0: सुनने में अजीब लगा ना, डायलॉग वही था, एक्टर्स भी वही थे, हर लव्स भी वही था, बस म्यूजिक गलत था। अब बिल्कुल वही सीन, बिल्कुल वही डायलॉग, लेकिन उस बैकग्राउंड स्कोर के साथ जिसने उस मोमेंट को हमेशा के लिए इमॉर्टल बना दिया।
1: एक लड़की देखी बिल्कुल बिजली की तरह, वन फ्लैश, एक चमक और रहा। मैं अपना दिल खो बैठा। मुझे लगता है मुझे इस लड़की से बेहद प्यार हो गया है। बस अब एक ही तमन्ना है, रहना है उसके दिल में।
0: Now you feel it, right? You feel it in your heart. पर देखा आपने, सीन नहीं बदला, एहसास बदल गया। और शायद इसलिए सिनेमा पहले आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। My special request of the week उसी फिल्म से है, इसका background score आज भी मोहब्बत की डेफिनेशन लगता है।
2: Special request song.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5
1: Fair and good, you would be just a little bit of a fair and good, fair and good.

0: हर बार जब कोई गाना सुपरहिट होता है हम मान लेते हैं कि उस गाने के सिंगर की जिंदगी भी बदल गई होगी, लेकिन बॉलीवुड का हिसाब किताब इतना सीधा नहीं होता। ना गुरु रंधावा का कहर फ्रॉम धमाल 4 इस हफ्ते नंबर 5 पर है और नंबर 4 पर है ये नंबर 4। पुराने गाने का नया वर्जन एंड समथिंग सिमिलर ऑन नंबर 3 एज वेल इज फ्रॉम कॉकटेल 2 एंड ये दोनों कॉकटेल फिल्म्स का सबसे लव्ड गाना है। एक ऐसा गाना जिसने सिर्फ चार्ट्स ही नहीं जीते दिल भी जीते। तुम ही हो बंधु कॉकटेल 2 का वो गाना जिसने कविता सेठ की आवाज को हर घर तक पहुंचाया। लेकिन अजीब बात यह है कि इतना बड़ा गाना देने के बाद भी प्रीतम दा और कविता जी की जोड़ी ने दोबारा कभी साथ काम ही नहीं किया। एंड मे बी दैट्स व्हाई हॉलीवुड इतना अनप्रिडिक्टेबल है। कभी ये गाना आपको हमेशा के लिए एवरग्रीन बना देता है और कभी वही गाना आपका सबसे बड़ा तोहफा भी बन जाता है और आखिरी भी। सुनिए खुद कविता सेठ से जब वो बता रही हैं कि तुम ही वो बंधु गाते वक्त उनके दिल में क्या चल रहा था।
1: तो वो गाना मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मेरे लिए बहुत हाई स्केल था, मेरी बहुत ही मिड लो टिम्बर और लो मिड टिम्बर वॉइस है, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे गाऊंगी। तो मैं जब जा भी रही थी, रास्ते में थी, तो मैं दादा को फोन करके बोली थी, मैंने कहा दादा मैं कैसे गाऊंगी, बहुत हाई है मेरे लिए, बहुत हाई रेंज में। बोले तुम आओ बस स्टूडियो, सब समक कर लोगी तो हो जाएगा, सब आ जाओ बस तुम। बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत डर लग रहा था कि उस दिन कैसे गाऊंगी, लेकिन काफी सारे टेक्स देने पड़े क्योंकि वो एक एक लाइन करके मैं रिकॉर्ड कर रही थी। जब रिकॉर्ड हो गया मैंने घर आके बच्चों को बताया ही नहीं, तो जब उसके प्रोमोज आना शुरू हुए उसमें मेरा और नीरज श्रीधर का नाम लिख करके आ रहा था तुम ही बंधु, तो दोनों बोल रहे ये आप कब गा के आए, अच्छा लग रहा है वैसे, अच्छा लग रहा है।
0: देखो अच्छे गाने कभी रिटायर नहीं होते, हर जनरेशन उन्हें दोबारा अपना ही लेता है और इसीलिए इस हफ्ते नंबर 3 पर कॉकटेल 2 एंड कॉकटेल 1 का सबसे बड़ा चार्ट बस्टर संग बाय नीरज श्रीधर एंड द लवली कविता सेठ, दिस इज तुम ही वो बंधु सखा तुम ही नंबर 3।

नंबर टू विद द सुपरस्टार हु इज बैक ऑन हिज कमबैक ट्रेल। भूत बंगला के बाद एक और स्मैश हिट वेलकम टू द जंगल एंड अक्षय कुमार के तारे पूरी तरह बदल चुके हैं। और इस गाने के बाद मुझे याद आ रहे हैं एक और सुपरस्टार बाय द नेम ऑफ ऋतिक रोशन। अल्फा रिलीज हुए अब कुछ हफ्ते हो गए हैं और जितनी बातें फिल्म की नहीं हुई उतनी ऋतिक रोशन की कैमियो की हुई। वो आए, 2 मिनट रुके और चले गए। एंड तब मुझे लगा यार बॉलीवुड ऋतिक रोशन को अब थोड़ा कम समझने लगा है, क्योंकि ऋतिक कभी सिर्फ एक्टर थे ही नहीं, वो एक बेंचमार्क थे, एक स्केल थे, एक फिनोमेना थे। आज भी ये सिर्फ एक गाना नहीं लगता, ये एक जमाना लगता है। और सोचिए ऋतिक रोशन का ये एक डांस स्टेप कुछ एक्टर्स के पूरे करियर से ज्यादा याद रखा जाएगा। बस एक स्टेप, इतना बड़ा था इसका इंपैक्ट। ऋतिक रोशन वॉज द लास्ट बिग सुपरस्टार एंड अब 25 साल बाद बॉलीवुड ऋतिक रोशन को उस अंदाज में दिखा ही नहीं पा रहा है। Can you believe it that War in 2019 was his last big blockbuster? And maybe that's why. मुझे लगता है कि बॉलीवुड को फिर से उस स्केल के सुपरस्टार की सख्त जरूरत है। मेरी नजर में और शायद आपकी नजर में सिर्फ दो लोग कंटेंडर्स हैं, रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। टैलेंट दोनों के पास है, दे हैव सम मेजर एक्टिंग चॉप्स, लेकिन अब बारी है अपनी लेगेसी लिखने की। और इस वक्त इस रेस में जो फिल्म सबसे आगे खड़ी है उसका गाना दूसरे हफ्ते भी मिर्ची डॉट 20 का नंबर 1 सॉन्ग, गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर नंबर 1।

0: हैंड्स डाउन इस काउंटडाउन का सबसे मैजिकल गाना, दूर दूर तक कोई कंटेंडर नहीं नजर आ रहा मुझको, एंड दैट मेक्स मी रियल हैप्पी। लेकिन इस हैप्पीनेस को यही एंड करना पड़ेगा, माय टाइम इज अप, बट जब जब मिर्ची टॉप 20 लगाओगे तब तब मुझे ही पाओगे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ना किसी हीरो के बारे में, ना किसी हीरोइन के बारे में, यहाँ वो गाने हैं जहाँ म्यूजिक ही असली मेन कैरेक्टर है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। वो गाने जो किसी पिक्चर के लिए, डायरेक्टर के लिए, एक्टर एक्ट्रेस के लिए नहीं, आर्टिस्ट खुद अपनी कहानी सुनाने के लिए बनाते हैं, यानी द नॉन फिल्म पॉप सॉन्ग्स। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई री एंट्री है। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। ऑफ कोर्स अ स्पेशल शाउट आउट ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ कनेक्ट करो। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लियर के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। दिस सॉन्ग फीचर्स क्राउड फेवरेट एल्विश यादव। चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। साडी सोनस दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौर का बैंगल्स, पिछले हफ्ते से चार पोजीशन नीचे गिरकर दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, साडी सोनस ऑन नंबर 10, बैंगल्स ऑन नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
2: नंबर 10।
3: हाउ चुप

0: लाल लाल कलर ची बांगड़ी वांगड़ी यानी बैंगल्स, संजू राठौड़ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैंगल्स, उनका मराठी पॉप गाना ब्रेकिंग लैंग्वेज एंड बैरियर्स 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स वन ऑफ दोज कोलैब्स जो आई एम क्वाइट सरप्राइज इन दोनों ने साथ में पहले कोई गाना नहीं किया, एंड नाउ जब आप ये गाना सुन चुके हैं, एवरीथिंग अबाउट दिस कोलैबोरेशन जस्ट मेक सेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट जसलीन रॉयल एंड बादशाह, उनका नया नवेला गाना इनाम। काउंटडाउन का अगले वाला गाना है, बट बिफोर वी प्ले द सॉन्ग आई हैव टू टॉक अबाउट जसलीन रॉयल। वो इस म्यूजिक इंडस्ट्री की ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। पिछले कुछ सालों से तो शी इज बीन गिविंग अस बैक टू बैक वायरल हिट्स लाइक हीरिये। ये गाना जसलीन ने कंपोज किया था, अरिजीत सिंह ने गाए है उनमें उसके साथ, देन ऑल्सो साहिबा विद स्टेबिन। दोनों गाने बिल्कुल वायरल, दोनों जसलीन ने कंपोज किए थे, बट यू नो जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उनकी बिगिनिंग्स कैसी हुई थी। आई हैड द प्रिविलेज टू स्पीक टू जसलीन, मैंने कई दफा उनके इंटरव्यू किए हैं, एंड हर बार आई जस्ट मेट दिस इनक्रेडिबल गर्ल, अ टैलेंटेड म्यूजिशियन जो लुधियाना से मुंबई आई। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के उन्होंने अपनी पहचान इस इंडस्ट्री में बनाई। आई हेट टू से इट बट वेरी वेरी फ्यू फीमेल कंपोजर्स हैव बीन एबल टू फाइंड देयर वॉइस। जहां जसलीन की आवाज सुनते ही हमें पता चल जाता है कि वो उनका गाना है, आई लव द कंपोजर दैट शी इज। आई एम श्योर इस गाने पे हर किसी ने फील्स लिए हैं।

इस गाने पे इतनी रील्स बनाई हैं आपने. दिस सॉन्ग इज ऑल्सो कम्पोज बाय जसलीन, सिर्फ गाया नहीं है उन्होंने. देन शेर शाह का रांझा जो बी प्राक ने गाया है वो भी जसलीन रॉयल ने ही कंपोज किया है. तो अब जब उन्होंने बादशाह के साथ ये गाना किया है, इट इज अ स्पेशल वन. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. जसलीन रॉयल बादशाह का गाना, गाने का नाम है इनाम. इट्स अ री एंट्री दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट
1: गाना इंडी टॉप 10
0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 7 7 7

0: ऐश किंग की आवाज गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 7 पर हमने ऐश किंग की आवाज में किनिया सोनी सुना, उससे पहले जसलीन रॉयल एंड बादशाह का गाना इनाम, जो की एक री एंट्री था ऑन गाना नंबर 8। जसलीन इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत बड़े आर्टिस्ट के लिए फिल्म के गाने भी कंपोज करे और अपने नॉन फिल्म गाने भी उतने ही बड़े बना दिए। And it's not at all an easy feat. कहीं ना कहीं मैं और आप वायर्ड हैं कि जब किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री या किसी बड़ी पिक्चर में कोई गाना आता है ना, तो हमें लार्जर देन लाइफ लगता है। हम सिंगर को भी याद रखते हैं, एक्टर्स को याद रखते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा कंपोजर्स को भूल जाते हैं। बट कंपोजर एंड लिरिसिस्ट, दे आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी गुड सॉन्ग जो हमें पसंद है। जसलीन इज अ कंपोजर बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
2: कहता कुछ और करता है और लेता है क्यों तू दिल पे जोर बदला बतला।
0: गली बॉय के साउंडट्रैक से है ये गाना, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स इन द एल्बम एंड ऑफ जसलीन। खो गए हम कहाँ हो गया या शेरशाह का रांझा हो गया, ये बहुत बड़े फिल्मों के गाने उन्होंने किए हैं, बट उनकी म्यूजिक करियर का जिक्र आई थिंक हीरिये के बिना अधूरा है। एंड आई रियली बिलीव कि उनके करियर का सबसे बड़ा गाना है फिल्म के गानों से बड़ा, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस जिनके लिए उन्होंने काम किया उससे बहुत बड़ा, बिकॉज हर तरीके से पूरा क्रिएटिव डायरेक्शन विजन जसलीन का है। 2023 में गाना आया, अरिजीत सिंह ने उनके साथ इस गाने में गाया है, वीडियो में दलकर सलमान है। This song was a phenomena. एक वक्त पर दुनिया का सबसे बड़ा गाना बनने वाला था। एंड जस्ट द फैक्ट दैट उनकी जर्नी, उनकी बिगनिंग्स कितनी हम्बल थी, ये सोच के आई ऑलवेज फील सो इमोशनल फॉर एवरी आर्टिस्ट, कि यही तो होते हैं वो फुल सर्कल मोमेंट्स जिनके लिए हम सब मेहनत करते हैं। इसीलिए हीरिये मैटर्स। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इफ यू आर समवन जो अपनी ड्रीम पे काम कर रहे हैं, एक दिन उसको अपना हीरिये मोमेंट जरूर मिलेगा। जसलीन रॉयल, अरिजीत सिंह की आवाज, जसलीन की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है हीरिये, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

जसलीन रॉयल अरिजीत सिंह की आवाज में एक गाने का नाम है हीरिये। ये सुन के ही मुझे ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है ऑफ सोशल मीडिया कॉज। आई रिमेम्बर एक साल पहले हर स्क्रोल में सिर्फ यही गाना बजता था। Now back to the countdown, अगले बारे गाने की बारी। आदित्य रिखारी रावटोर कुटले खां का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

0: एक हफ्ता हो गया है इस गाने को लूप पे सुनते हुए। वे जुनून फ्रॉम आवारा पंटू, इमरान हाशमी का माइनस टच और मिथुन का मैजिक। और जितना गाना सुना उतना ही लोगों को भी सुना, उनके कमेंट्स, उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनका सोशल मीडिया। और मुझे एक बात समझ में आई, हम शायद वे जुनून को सुन ही नहीं रहे, हम उसकी कंपैरिजन अपनी यादों से कर रहे हैं। आवारापन की असली लेगेसी फिल्म नहीं थी, उसका म्यूजिक था और उनके साथ जुड़ी हमारी यादें। और ये कभी इम्पार्शियल नहीं होती, पर अब कई लोग कह रहे हैं कि इसमें सैयारा की झलक है। हो सकता है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी तो है। जब हम किसी नए गाने को सुनते हैं, पुराने दिल के साथ सुनते हैं, उससे वही महसूस करना चाहते हैं जो 20 साल पहले किया था, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं है। हर सीक्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली फिल्म नहीं होती, उससे जुड़ी हुई यादें होती हैं, और उनसे जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और अब देखते हैं क्या वक्त वे जुनून के साथ भी वही करता है जो उसने तो फिर आओ के साथ किया था। अनफॉर्चुनेटली अगला गाना आपके इमोशंस को उतना नहीं टटोलेगा, क्योंकि इसका नाम है चटनी। ये है फ्रॉम धमाल 4 एंड इस हफ्ते है नंबर 9 पर।
1: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर टू

कदर नंबर टू विद द सुपरस्टार हु इज बैक ऑन हिज कमबैक ट्रेल। भूत बंगला के बाद एक और स्मैश हिट वेलकम टू द जंगल एंड अक्षय कुमार के तारे पूरी तरह बदल चुके हैं। और इस गाने के बाद मुझे याद आ रहे हैं एक और सुपरस्टार बाय द नेम ऑफ ऋतिक रोशन। अल्फा रिलीज हुए अब कुछ हफ्ते हो गए हैं और जितनी बातें फिल्म की नहीं हुई उतनी ऋतिक रोशन की कैमियो की हुई। वो आए, 2 मिनट रुके और चले गए। एंड तब मुझे लगा यार बॉलीवुड ऋतिक रोशन को अब थोड़ा कम समझने लगा है, क्योंकि ऋतिक कभी सिर्फ एक्टर थे ही नहीं, वो एक बेंचमार्क थे, एक स्केल थे, एक फेनोमेना थे। आज भी ये सिर्फ एक गाना नहीं लगता, ये एक जमाना लगता है। और सोचिए ऋतिक रोशन का ये एक डांस स्टेप कुछ एक्टर्स के पूरे करियर से ज्यादा याद रखा जाएगा। बस एक स्टेप, इतना बड़ा था इसका इंपैक्ट। ऋतिक रोशन वॉज द लास्ट बिग सुपरस्टार एंड अब 25 साल बाद बॉलीवुड ऋतिक रोशन को उस अंदाज में दिखा ही नहीं पा रहा है। Can you believe it that War in 2019 was his last big blockbuster? And maybe that's why. मुझे लगता है कि बॉलीवुड को फिर से उस स्केल के सुपरस्टार की सख्त जरूरत है। मेरी नजर में और शायद आपकी नजर में सिर्फ दो लोग कंटेंडर्स हैं, रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। और टैलेंट दोनों के पास है, दे हैव सम मेजर एक्टिंग चॉप्स, लेकिन अब बारी है अपनी लेगेसी लिखने की। और इस वक्त इस रेस में जो फिल्म सबसे आगे खड़ी है उसका गाना दूसरे हफ्ते भी मिर्ची डॉट 20 का नंबर 1 सॉन्ग, गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर नंबर 1।

0: हैंड्स डाउन इस काउंटडाउन का सबसे मैजिकल गाना, दूर दूर तक कोई कंटेंडर नहीं नजर आ रहा मुझको, एंड दैट मेक्स मी रियल हैप्पी। लेकिन इस हैप्पीनेस को यही एंड करना पड़ेगा, माय टाइम इज अप, बट जब जब मिर्ची टॉप 20 लगाओगे तब तब मुझे ही पाओगे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मम व्हाट्स टैन इन हिंदी।
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: दिस इज समथिंग

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में, और अब चलो देखते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर मौसम का हाल चाल क्या है। फिलहाल टेम्परेचर है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, सनशाइन फुल वॉल्यूम पर है, लेकिन हवा थोड़ी सी नॉटी चल रही है, 58 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसा फील करा रही है। गुड न्यूज ये है कि पूरा दिन सनशाइन ही सनशाइन रहने वाली है। अम्ब्रेला को आज पेड लीव दे ही दो तुम, क्योंकि अगले 24 घंटों में रेन का जीरो चांस है। यस, 0 मिलीमीटर की प्रेसिपिटेशन है, जस्ट लाइक यस्टरडे। तो आज वॉशिंग मशीन भी खुश हो जाएगी, तुम्हारी लॉन्ड्री भी खुश होने वाली है। टेम्परेचर सुबह 58 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होगा और आफ्टरनून तक जाते जाते 83 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, लेकिन फील होने वाला है 57 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। और हाँ, आज का हाई ऑलमोस्ट कल के जैसा ही है, कल 82 डिग्री फ़ारेनहाइट हाई था और आज जाने वाला है 83 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। सो फिलहाल ऑफिस जा रहे हो, रोड ट्रिप पर जा रहे हो, या फिर मॉर्निंग वॉक फिनिश कर रहे हो, सनग्लासेस साथ में लेकर जाना, चिपकाकर जाना अपने मुंह पर सनब्लॉक, SPF 50+++, एंड ऑफ कोर्स कैरी योर वाटर बॉटल, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेयर के प्लेयर बनो और साथ में मिर्चीदार वाइब्स को अपने पास चिपकाए रखो। मैं हूं प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मैं हूँ मिर्ची प्रिस के नाम से, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: It's hot.
1: Mirchi. It's hot.
2: 98.3 Mirchi. It's hot.

गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और अब चलेंगे हम टाइम ट्रैवलिंग के लिए। 1881 में सिटिंग बुल, जो सू ट्राइब के लेजेंडरी चीफ थे, उन्होंने यूएस फेडरल ट्रूप के सामने सरेंडर किया। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री का डायरेक्शन ही बदल दिया। 1960 में हमारे साउथ एशियन नेबरहुड में से एक प्राउड मोमेंट, सिरिमाओ बंदरानायके ने श्रीलंका तब सेलोन की प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली और वो बनी दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। 1969 में वो लाइन जो हिस्ट्री के बुक से लेकर मूवी डायलॉग्स तक इमॉर्टल हो गई, नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के थ्रू मून पर पहला कदम रखा। जब लोग कहते हैं ड्रीम बिग, आज तो इंसान चांद पर पहुंच चुका है। और 1976 में नासा का वाइकिंग 1 मार्स पर सेफली लैंड हुआ और रेड प्लैनेट की पहली क्लोज अप फोटोज अर्थ को भेजी गई। ये सेल्फीज नहीं थी लेकिन उस जमाने की बेस्ट अपलोड जरूर थी। वैसे अगर तुमको भी ऐसे कुछ फन फैक्ट्स पता है हिस्ट्री के बारे में, मुझे बता सकते हो, मुझसे शेयर कर सकते हो, आई विल रीड देम आउट ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, मेरा नाम है प्रिसला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: न्यू जर्सी में हुए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। हीरो बने फेरान टोरेस, जिन्होंने 106 मिनट में एक्स्ट्रा टाइम का मैच विनर दागा। अर्जेंटीना को बड़ा झटका तब लगा जब एंजो फर्नांडिस स्टॉपेज टाइम में रेड कार्ड देखकर बाहर चले गए। स्पेन ने अपना सेकेंड वर्ल्ड कप जीता है, वो भी 16 इयर्स के बाद, और साथ में $50 मिलियन का विनर चेक भी जीता है। लायनल मेसी ने रेफरी से अपील भी की कि स्पेन के डिफेंडर मार्क कुकुरेला को माउथ कवर करके बात करने पर रेड कार्ड दिखाया जाए, लेकिन रेफरी स्लोवाको विंट्रिक ने प्ले ऑन कहा और गेम चलता रहा। ड्रामा फीफा वर्ल्ड कप का पेड एक्टर था इस बार। टूर्नामेंट में गोल्डन बूट गया किलियन एम्बापे को फॉर 10 गोल्स। गोल्डन बॉल जीता स्पेन के कैप्टन रोड्री ने। बेस्ट यंग प्लेयर बने 19 ईयर ओल्ड पाओ कुबार्सी, और गोल्डन ग्लव जीता स्पेन के गोलकीपर उनई सिमोन ने। स्पेन सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी घर नहीं ले गए, बल्कि ऑलमोस्ट अवार्ड का शेल्फ भी घर ले गए हैं। और अर्जेंटीना वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाई, लेकिन उनके प्रेसिडेंट हावियर मिलेई ने एक अनएक्सपेक्टेड गूगली डाल दी है। उन्होंने अनाउंस किया है कि टीम की वर्ल्ड कप जर्नी को ऑनर करने के लिए नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया जाएगा। डेट अभी डिसाइड होनी बाकी है और वो प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ से डिस्कशन के बाद फाइनल होगी। फिलहाल तुम्हारी लिस्ट फाइनल है, आगे आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 Mirchi, that's 9033-647-2444. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. और अभी तक अगर तुम कॉफी ढूंढ रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, तुम ऑफिशियली फंक्शन कर रहे हो जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. देखो अभी अभी ये शो मिर्ची मॉर्निंग शुरू हुआ है. मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर होती है ऐसी बातें जो स्नूज मोड से बाहर निकालती है तुमको. अगर अभी फिलहाल तुम पार्कवे पर हो, सबवे पकड़ रहे हो, या फिर ऑफिस में लॉग इन कर रहे हो, या बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके फाइनली मी टाइम एंजॉय कर रहे हो, यू हैव गॉट कंपनी. अगले कुछ घंटों तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ. हम साथ में मिलकर इस मॉर्निंग को, इस दिन को थोड़ा सा लेस में और थोड़ा सा सुपर वाव बनाने वाले हैं. आज के शो में होने वाली है कुछ बॉलीवुड की गपशप, कुछ फन स्टोरीज, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ी सी मस्ती, एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक जो कि सारा का सारा मिर्चीदार और बैंगर है. और ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ. ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं, बहुत सारे पीजेस मैं मारने वाली हूँ. काश कैलोरीज लाफ्टर से बर्न होती. खैर लाफ्टर से कैलोरीज बर्न नहीं होती, लेकिन मूड अच्छा हो जाता है. और इस मूड को अच्छा बनाए रखेंगे मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. फटाक से मुझे फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS इंस्टाग्राम और एक्स पर. और साथ में व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट. मिर्ची, इट्स हॉट. Yeah.

मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब टाइम हो चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर जानने का कि दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले हैप्पी फैमिली अपडेट फ्रॉम द यूएस। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और उनकी वाइफ उषा वैंस ने अपने फोर्थ बेबी का वेलकम किया है, अ बेबी बॉय नेम्ड एलेक नील वैंस, और हिस्ट्री भी बन गई है। क्यों? क्योंकि ये 156 इयर्स के बाद पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग यूएस वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में रहते हुए उनके घर बेबी बॉर्न हुआ है। कंग्रेचुलेशंस टू द होल फैमिली। नंबर टू पर पाकिस्तान ने कराची में एक साइकिल एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की है और सोशल मीडिया ने ब्रेक्स ही नहीं लगाए हैं। मीम्स की फुल ऑन बारिश हो रही है। कुछ लोगों ने इसे इको फ्रेंडली आइडिया कहा है और कुछ लोगों ने इसे इंटरनेट स्टाइल सरकैज़म सर्व कर दिया है। और फाइनली नंबर थ्री पर इंडिया में पार्लियामेंट के बाहर स्पेस अचीवमेंट सेलिब्रेट किया गया। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की यंग टीम की तारीफ करते हुए उनकी एवरेज एज 28 ईयर्स का जिक्र किया है और अपनी स्पीच में एक पॉलिटिकल जाइब भी दिया है एट राहुल गांधी। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुनते रहो मुझे और साथ में मुझे कनेक्ट भी कर लो। इंस्टा और एक्स पे मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: की है।
1: ओ, गल करनी थी।
0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की।
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: अरे 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। कैटरीना कैफ ने अभी रिसेंटली अपना 43rd बर्थडे मनाया और बहुत ही सुपर अडोरेबल तरीके से मनाया। उन्होंने कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए और ऑनेस्टली ये फुल ऑन हार्ट मेल्टिंग मटेरियल था। पिक्चर्स में हबी विकी कौशल के साथ कोजी बर्थडे मोमेंट्स उन्होंने शेयर किए और सबसे प्यारी फोटो पता कौन सी थी? कैटरीना अपने लिटिल वन यानी कि विहान के टाइनी टाइनी हैंड्स को किस करती हुई नजर आई है पिक्चर्स में। फेस प्राइवेट रखते हुए उन्होंने प्राइवेसी भी मेंटेन की है और क्यूटनेस का ओवरलोड भी दे दिया है। कैप्शन भी बड़ा ही क्यूट था। कैटरीना ने लिखा है, फॉरएवर लुकिंग अप इन ग्रेटिट्यूड एट द मोस्ट प्रेशियस ब्लेसिंग दैट यू आर, बेस्ट बर्थडे। फैंस तो कमेंट में बस एक ही बात बोल रहे थे, और विक्की भाई साहब ने तो पहले ही बर्थडे विशेस में रोमांस का फुल वॉल्यूम ऑन कर दिया था। कपल गोल्स का हैशटैग इन दोनों के पास लाइफ टाइम लगा हुआ है। हाय, और मैं यहाँ पर अकेली। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अकेला मत छोड़ो यार, जाकर मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIBRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। ड्रॉप मी सम क्यूट मैसेजेस एंड ऑफ कोर्स मिर्चीदार गाने मैं तुम्हारे लिए लगाने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड।

मॉर्निंग में बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर आज यानी कि 20th of July को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू जादू की झप्पी और पप्पी के साथ। दिल से दुआ है कि तुम्हारा नया साल जो है ना वो फुल ऑन गुड हेल्थ के साथ रहे, हैप्पी सरप्राइजेस मिले तुम्हें साल भर, पैसा ही पैसा हो तुम्हारी लाइफ में, और लो बैलेंस ना फोन में हो ना बैंक में हो। और अब तुम्हारे बर्थडे ट्विंस की लिस्ट भी मेरे पास आ चुकी है। कार्लोस सैंटाना, गिटार के मैजिशियन, उनका आज हैप्पी बर्थडे। और हमारे इंडियन सिनेमा के पावर हाउस परफॉर्मर, वेटरन एक्टर, गेस हु, नसीरुद्दीन शाह, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। ब्राजीलियन सुपर मॉडल एंड जेसन स्टेथम की पार्टनर जुजेल बंशन का भी आज हैप्पी बर्थडे है। साथ में किलिंग ईव और ग्रेज एनाटॉमी की ब्रिलियंट एक्ट्रेस सैंड्रा ओ, और साथ साथ में जूडी ग्रियर। मतलब आज का दिन टैलेंट की अटेंडेंस फुल ऑन है। अगर तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है तो अपने शाउट आउट मुझे भेज सकते हो, अपने लिए या किसी फ्रेंड के लिए। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, और व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब खन खनाने की और चमचमाने की बारी आ चुकी है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर।
1: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,065 $4,065 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपके पास पुरानी गोल्ड ज्वेलरी है जो आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी भी ज्वेलर से खरीदी, राज ज्वेल्स की कैरेटोमीटर के साथ आप अपना पुराना गोल्ड टेस्ट कराते हुए एक्सचेंज कर सकते हैं फुल गोल्ड एक्सचेंज वैल्यू में, जहां आप नई 22 कैरेट गोल्ड के डिजाइन हो, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी हो, आप एक्सचेंज करके नए सोने के गहने घर ले जा सकते हैं। और हमारी स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें आप 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट पे, 9 इंस्टॉलमेंट में, बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी, बिना किसी डाउन पेमेंट के गोल्ड का प्राइस लॉक आज करके ज्वेलरी घर ले जाएं और 9 महीने में पैसे दें। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
0: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे बातें करनी है तो इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोरियोग्राफर को मैं ही

राइट, वेलकम टू द लास्ट आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला और अब हम बातें करने वाले हैं सबसे पहले इंडिया से खबर। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के प्रोटेस्ट मार्च के दौरान टेंशन्स देखने को मिले हैं। पुलिस ने क्राउड को रोकने के लिए टियर गैस का इस्तेमाल किया है। कुछ प्रोटेस्टर्स और पुलिस पर्सनल के इंजर होने की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और पार्लियामेंट के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। CJP के स्पोक्स पर्सन ने यह भी क्लेम किया है कि पार्टी के मेंबर अभिजीत डिपके को पुलिस ने डिटेन किया है। दिस केम टू डेज आफ्टर दे ऑलरेडी डिटेन्ड एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों की अग्रेसिव स्टेटमेंट्स का वीडियो भी वायरल हुआ है। सिचुएशन फिलहाल डेवलप हो रही है और अथॉरिटीज की तरफ से अपडेट का इंतजार है। नंबर टू पर इंडिया में इस साल नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बहुत सारे जबरदस्त परफॉर्मेंसेस को सल्यूट किया गया। वेटरन एक्टर मामूटी वन बेस्ट एक्टर फॉर ब्रह्मयुगम। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट डायरेक्टर गोज टू राजकुमार पेरियासामी फॉर अमरन। साथ ही बेस्ट फीचर फिल्म आर्टिकल 370 को मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट गोज टू खालकी। एंड बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल वैल्यूज गोज टू कैप्टन मिलर। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत वन बेस्ट हिंदी फिल्म। एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर गया है वेटरन एक्टर संजय मिश्रा को फॉर हिज फिल्म भक्षक। और फाइनली नंबर थ्री पर क्रिकेट से रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट रूमर्स पर स्माइल के साथ फुल टॉस मारा है। उन्होंने कहा है देर इज नो नॉइज देर इज नो फन, मतलब गॉसिप अपना काम कर रही है और रोहित अपने काम पर फिलहाल फोकस करना चाहते हैं। And that's it for Mirchi Hour का 3। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स एंड वेलकम टू राशि जोन, पहला पार्ट जहाँ फर्स्ट सिक्स राशियों की बात करने वाले हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज टफ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने से पहले रियलिटी चेक जरूर कर लेना। लकी कलर फॉर यू इज लाइट ब्लू, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ओल्ड स्कूल मेथड्स को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट देने का टाइम आ चुका है। नया अप्रोच ही आज गेम चेंजर बन सकता है तुम्हारे लिए। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, एडवाइस सब देने वाले हैं फ्री में वो भी, लेकिन आज अपनी इनर वॉइस को ही अपना GPS मानकर आगे बढ़ते जाओ। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, फन करो लेकिन वॉलेट को इमोशनल मत बनने दो। हर बिल का स्पॉन्सर बनना जरूरी नहीं, कुछ दूसरों को भी पे करने दो। लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर, लकी नंबर इज 31। लियो यानी कि सिंह राशि, कॉन्फिडेंस फैंटास्टिक है, बस ओवर कॉन्फिडेंस को आज थोड़ी देर के लिए लीव पर भेज दो। आज अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करो। लकी कलर फॉर यू इज कॉपर, लकी नंबर इज 8। वर्गो यानी कन्या राशि, जो फियर सिर्फ इमेजिनेशन में है उसको रेंट फ्री मत रहने दो यार। डीप ब्रेथ्स लो, यू've हैंडल्ड वर्स देन दिस। लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव ग्रीन, लकी नंबर इज 22। एंड ये याद रखो कि हॉरोस्कोप डायरेक्शन देता है, डेस्टिनेशन पर तुम्हें खुद से जाना पड़ता है अपने डिसीजंस लेकर। एंड फिलहाल मिर्ची तर बैंगर्स में चलाती हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आई विल बी बैक विद राशि जोन पार्ट 2। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मैं हूँ प्रिसला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। अब बारी है राशियों को डिकोड करने की।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आज स्पीड से ज्यादा स्ट्रैटेजी काम आने वाली है। थोड़ा स्लो सोचो, लॉन्ग टर्म में वही फास्ट काम करेगा। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 16। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, हर नो के पीछे एक रीजन होता है। आज लोगों की इंटेंशंस को समझने की कोशिश करो। लकी कलर फॉर यू इज ब्राइट रेड, लकी नंबर इज 39। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, मल्टीटास्किंग सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। एक गोल पे फोकस करो, वही जैकपॉट बनाएगा तुम्हारी लाइफ को। लकी कलर फॉर यू इज डार्क ब्लू, लकी नंबर इज 11। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनाओ। क्लियर विजन होगा तो एग्जीक्यूशन भी ब्लॉकबस्टर होगा। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 42। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, दुनिया को अकेले फिक्स करने का कॉन्ट्रैक्ट लेना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे एफर्ट्स भी बड़े बड़े काम आगे जाकर बनाते हैं। लकी कलर फॉर यू इज आक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 9। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, हर डिबेट जीतना जरूरी होता है क्या? नहीं ना, कभी कभी पीस ऑफ माइंड के लिए बेस्ट होता है ट्रॉफी को छोड़ देना, इसीलिए आज लेट गो। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 24। अब ये याद रखो, स्टार्स इंस्पायर कर सकते हैं तुम्हें, लेकिन स्टीयरिंग व्हील तो हमेशा तुम्हारे हाथ में ही होना चाहिए। वी आर डन विद राशि जोन पार्ट 2। अब बारी है मिर्चीदार बैंगर्स की, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला, मेरे सोशल्स लिख लो ताकि मुझे फॉलो कर सको। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

इसी के साथ इंटरेस्टिंग थॉट्स मेरे दिमाग में तो आ रहे हैं, लेकिन ये भी आ रहा है कि जाना पड़ेगा मुझे मिर्ची मॉर्निंग से, क्योंकि रैप अप का टाइम हो चुका है। मेरा नाम है प्रिस्सिला और जाने से पहले तुम्हें एक अजीब और गरीब स्टोरी बताकर जाती हूँ। चाइना के हांगजो में एक डिजास्टर सिमुलेशन ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर लोग अराउंड $230 देकर एक्सपीरियंस करते हैं टाइफून या फ्लैश फ्लड में फंसा होना कैसा फील होता है। ये सेंटर 165 किलोमीटर्स पर आवर की विंड जनरेट कर सकता है, टोरेंशियल रेन बरसाता है और 900 मेट्रिक टन्स तक पानी रिलीज करके माउंटेन फ्लडिंग जैसा एक्सपीरियंस भी सिमुलेट करता है। अरे भाई, हम तो फ्री में प्रेशर कुकर की सीटी और मंडे मॉर्निंग के ट्रैफिक से ही काफी थ्रिल ले लेते हैं। इतना रियलिस्टिक एडवेंचर तो मेरी मम्मी का घर आकर तुझे बताती हूँ, ये भी नहीं देता था मुझे। लेकिन जोक्स अपार्ट यार, सिमुलेशन सेंटर्स का पर्पस होता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर अवेयरनेस को समझाना, जो कि ये बाखूबी कर रहा है। रियल इमरजेंसी आए तो पैनिक कम हो और प्रिपरेशन ज्यादा हो, लेकिन एक्चुअल डिजास्टर के टाइम पर लोग कितना एक्टिवली अपने लेसन्स याद रखते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। व्हाट वुड यू डू? वुड यू पे अराउंड $228 to $230 फॉर अ सेशन लाइक दैट? एंड हाँ, डिस्क्लेमर, आई डोंट

थिंक जान का खतरा है वहां पर, क्योंकि सारी चीजें एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में होती होंगी, बट हु नोज। सो इफ यू डिग सच अ थिंग, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी वेकेशन प्लानिंग में इसको कंसिडर किया जा सकता है। एंड विद दैट थॉट, सबको टाटा बाय बाय हैगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सेफ रहो, और वेदर आपको इग्नोर बिल्कुल मत करो। और मुझे अगर याद करोगे तो मिर्ची प्रिंस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर। गो एंड फॉलो मी देयर, एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। Authentic, original, and better than our right.

0: सुबह के 6:30 बज रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है। मामा ने बोला है कि बारिश बहुत है तो आज स्कूल नहीं जाना है। उफ, ये फील फिर से जीने का दिल करता है।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और वाकई में यार, वो दिन भी क्या दिन थे जब ऐसी हसीन सुबहें भी हुआ करती थीं सावन के मौसम में, जब सुबह उठते थे बाहर बारिश बहुत तेज हो रही होती थी और मम्मा डिक्लेयर कर देती थी कि नहीं नहीं नहीं नहीं आज तो बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा लगता था कि यार ये क्या, ऊपर वाले ने हमारे ऊपर बारिश की रहमत तो बरसाई बरसाई, ऊपर से स्कूल की छुट्टी की रहमत भी बरसा दी, यानी कि एक रहमत के साथ एक रहमत बिल्कुल मुफ्त। और फिर बाकी का दिन बड़ी तसल्ली से तफरी में कटा करता था यार। हम सीधे बेड पे बैठ जाया करते थे, टीवी स्विच ऑन करते थे, कार्टून नेटवर्क से हमारी सुबह और जिंदगी की शुरुआत हुआ करती थी, और फिर मम्मा नाश्ता बनाकर लाती थी, पलंग पे बैठकर हम नाश्ता कर रहे होते थे, कार्टून नेटवर्क देख रहे होते थे और इस बात की खुशी मना रहे होते थे कि आज स्कूल की छुट्टी और होमवर्क भी नहीं करना है, क्योंकि कल का होमवर्क तो ऑलरेडी आज के लिए हमने कर लिया था ना, अब आज तो कोई नया होमवर्क मिलने भी नहीं वाला है। मम्मा भी नहीं डांटती थी कि टीवी मत देखो सुबह उठते के साथ ही, क्योंकि सुबह उठते के साथ अगर टीवी ना देखते तो क्या करते, बाहर तो बारिश हो रही थी ना, खेलने तो जा नहीं सकते थे, होमवर्क था नहीं तो करते ही क्या। लेकिन हाँ, दिन चढ़ते चढ़ते एक टाइम ऐसा भी आता था जब मम्मा कहती थी कि अब किताबें खोल के बैठ जाओ। शायद वो मम्मा के दिल की तसल्ली के लिए हुआ करता था कि होमवर्क नहीं भी है तो बच्चे किताबें खोल के तो एटलीस्ट बैठ जाएं। पेरेंट्स को भी आई थिंक कहीं ना कहीं गिल्ट होता ही है ना कि बच्चों को कुछ ज्यादा ही मस्ती नहीं मारने दिए। बट एनीवेज, वो दिन भी क्या दिन हुआ करते थे। आए हाय, मुझे ना वो कुछ चंद घंटों के लिए किताबें खोलना भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये जो छुट्टी की रहमत बारिश की रहमत के साथ मुफ्त आती थी ना, वो बड़ी सुहानी लगती थी। ये फील ही कुछ और होता था यार, जो स्कूल के जमाने के बाद तो कहीं चला ही गया। जब से डिसीजन मेकिंग हमारे हाथों में आ गई है कि छुट्टी लेनी है तो हमें ही लेनी है, लीव लगानी है तो हमें ही लगानी है, काम करना है तो हमें ही करना है, नहीं करना है तो भी हमें ही करना है, क्योंकि आज नहीं किया तो कल तो करना ही पड़ेगा। उफ, ये अडल्टिंग भी ना अच्छे सुहाने ख्वाब को न जाने कैसे तार तार कर देता है, नहीं क्या। चलो फिर चलते हैं यार वापस से उसी जमाने में जो कि 90 का दौर है। तो 90s की गियर में गाड़ी को डालती हुई मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को आगे बढ़ाती हूँ और आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yeah, 90s के दौर में एक बड़ी क्यूट सी फिल्म आई थी. फिल्म का नाम था अंजलि. और इस फिल्म का ये गाना, अंजलि अंजलि अंजलि हमारी आंखों का तारा अंजलि. याद है आपको ये फिल्म?
0: Mirchi VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And long before तारे जमीन पर या सितारे जमीन पर जैसी फिल्में आई, this film was made by Mani Ratnam, who worked on a movie talking about special needs kids. जिस टॉपिक को 90s के दौर में किसी ने नहीं छुआ था. And Anjali was among the first Indian mainstream films जो कि एक ऐसे बच्चे के ऊपर बनी थी who had mental disabilities. और जिस फिल्म ने autism जैसे developmental delay के बारे में awareness फैलाने की कोशिश करी थी, which was a very very rare thing in those days. हाँ, इस फिल्म की जो लीड थी, यानी कि वो जो छोटी सी बच्ची जिसके ऊपर ये फिल्म का टाइटल रखा गया था, her real name was baby Shamili. और इस बच्ची की उम्र पता है क्या थी जब उसने ये Anjali का रोल प्ले किया था? She was just 2.5 years old. Can you just imagine? इतनी छोटी सी बच्ची ने अपने कंधों पर पूरी फिल्म चलाई है. और यही वजह थी कि बेबी शामली इवेंचुअली गॉट द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर हर रोल, जिसकी वजह से शी बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट रिसिपिएंट्स एवर. और आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस फिल्म की कास्टिंग किस बेसिस पे की गई होगी. वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली मणिरत्नम सर वॉन्टेड टू कास्ट रियल स्पेशल चाइल्ड, लेकिन फिर रोल इतना कॉम्प्लेक्स था कि उस स्पेशल चाइल्ड से वो एक्टिंग करवाना, वो इमोशंस निकलवाना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता. तो इस वजह से उन्होंने काफी सारे टॉडलर्स के ऑडिशंस लिए बिफोर दे सिलेक्टेड बेबी शामिली. एंड इस फिल्म को शूट करने के लिए कहा जाता है कि मनी सर ने काफी सारे हिडन कैमरास का इस्तेमाल किया सो दैट वो जो चाइल्ड एक्टर्स हैं उनके नेचुरल मोमेंट्स को कैप्चर कर पाए. क्योंकि यार बचपन तो बड़ा मासूम होता है ना. आप उनको एक्टिंग के दाव पेच सिखाओगे ना, तो वो नेचुरल मासूमियत जो है वो निकल कर नहीं आएगी, जो कि वो तब कैप्चर कर ली जाए जब वो निकल कर आए. और कितने सारे तो ऐसे सीन्स थे जिनको की शूट करने के लिए सिर्फ सिंगल टेक्स लिए गए थे, ताकि बच्चों की स्पॉन्टेनिटी जो है वो मेंटेन रहे. यानी कि पहला टेक जैसा भी गया है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर वो मासूमियत और स्पॉन्टेनिटी थी विच वॉज रिक्वायर्ड ऑन स्क्रीन, तो उस टेक को वैसा का वैसे ही रहने दिया और रीशूट नहीं किया. आई थिंक शायद इसी वजह से ये मूवी हमें इतनी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर वाकई में इतना ऑर्गेनिक इमोशन शामिल है कि जब हमने ये फिल्म देखी तो हम खुद भी रो दिए. लेकिन सिर्फ हम ही नहीं रोए थे, सेट पर कई सारे लोग रोए थे, जिनके बारे में बताऊंगी आपको थोड़ी देर में. अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: मैंने जब ये फिल्म देखी थी ना अंजलि, मैं बहुत छोटी थी यार, और मुझे आज भी याद है कि इस फिल्म को देखकर मैं इतना रोई हूँ और इतना इमोशनल हुई हूँ कि मुझे उस ऑन स्क्रीन कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई थी, और मैं इतनी इनक्विजिटिव थी टू नो अबाउट दैट किड जो कि अंजलि बनी हुई थी पूरी फिल्म में. लेकिन सैडली तब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था टू नो मोर थिंग्स अबाउट व्हाट्स गोइंग अराउंड. बट ये इकलौती मैं ही नहीं थी जो इतनी इमोशनल हो गई थी इस फिल्म को देखने के बाद. जब ये फिल्म शूट हो रही थी एट दैट टाइम टू, काफी सारे लोग सेट्स पर इमोशनल हो गए थे.
1: मिर्ची चैट रूम.
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड रेवती जो कि शामली यानी कि ऑन स्क्रीन अंजलि की मदर का रोल प्ले कर रही थी, उनके और शामली के बीच में काफी सारे ऐसे सीन्स थे जो कि इमोशनल सीन्स थे. और जब वो सीन्स शूट हो रहे थे ना, तो जितने भी क्रू मेंबर्स थे ना, वो भी साथ साथ रो रहे थे. स्पेशली वो सीन जो कि हॉस्पिटल में शूट किया गया था, एंड दैट वॉज अंजलिज डेथ सीन. आज भी जब मैं वो सीन देखती हूँ ना भाई, मुझे तो रोना आ जाता है बहुत भयंकर तरीके से. एंड इसके पीछे की वजह ये है कि मणिरत्नम सर बहुत अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर, और बच्चों को वो पर्सनली रिहर्स करवाया करते थे सारे के सारे सीन्स मल्टीपल टाइम्स, सो दैट बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल कर आए कैमरा पे. क्योंकि उनकी कोशिश यही थी कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही पहले टेक के अंदर बेस्ट शॉट निकल कर आ जाया करता था. और वो ज्यादा टेक्स ले भी नहीं रहे थे इस फिल्म को शूट करने के लिए बच्चों के साथ. यही नहीं, मणिरत्नम सर वो सो इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ पेरेंट्स जो कि डील कर रहे थे विद स्पेशल चिल्ड्रन, कि उन्होंने इस फिल्म को महीनों की चाइल्ड साइकोलॉजी की रिसर्च वर्क के बाद ही शूट किया और लिखा. जिसका असर ये हुआ कि ये फिल्म इवेंचुअली वॉज बीइंग यूज्ड एज अ रेफरेंस मटेरियल इन साइकोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन स्टडीज अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटीज. स्पीक्स अ लॉट अबाउट हाउ मनी सर डील्स विद द सोशल इश्यूज, और वो किस तरीके से इन सोशल इश्यूज को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लेकर आते हैं और हाईलाइट करते हैं. ये उन्होंने सिर्फ अंजलि के साथ नहीं किया है, उनकी फिल्म बॉम्बे, दिल से, गुरु, ये सारी वो सारी फिल्म्स थी जिन्होंने सोशल इश्यूज को उठा के मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाके बड़े पर्दे पर दिखा के उसकी अहमियत को और बढ़ा दिया, और उन सोशल इश्यूज को बड़ी खूबसूरती से कैप्चर किया. ये है हमेशा का जादू जो मणिरत्नम सर अपने लेंस के साथ बिखेर ही देते हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

Mirchi. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अब जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना, उसको सुनते के साथ ही ना आपके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आने वाली है। सुनो जरा।
2: जानू है जानू, इतना सजानू, हाँ।

0: दानू
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
0: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड दानू दानासुर वाज आर संडे का एंटरटेनमेंट का पिटारा बॉस। हर संडे हम ये कार्टून देखा करते थे फॉर श्योर विदाउट एनी फेल। लेकिन पता है मुझे क्या खास बात पता लगी है अबाउट दानू? वेल एक्चुअली इंडिया में तो हम इसे दानू के नाम से जानते थे, लेकिन दानू तो वो हिंदी में बन गया था। एक्चुअली दिस वॉज एन इंग्लिश कार्टून शो जिसको की डेनवर द लास्ट डायनासोर के नाम से बनाया गया था, और हिंदी में ये दानू दानासुर बन गया था। क्लियरली एट दैट टाइम इंग्लिश कार्टून्स का मार्केट बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, तो आई तो लव दानू डायनासोर देन डेनवर द लास्ट डायनासोर। एंड इन फैक्ट जो इंग्लिश वाला कार्टून था ना, उसका गाना सुनाती हूँ आपको मैं। अच्छा है ना? लेकिन स्टिल आई वुड से कि जो हमारा हिंदी वाला कार्टून था ना डब्ड वर्जन, दैट वाज मच बेटर। उसका गाना तो मेरा जिंदगी भर के लिए फेवरेट है। Dinosaur, dinosaur, dinosaur. You tune in with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म बॉर्डर। और ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ ना, पता नहीं अनु मलिक की कॉम्पोजिशन का क्या जादू है बॉस। इस गाने को सुनते के साथ ही ऐसा दिल करता है कि हाय मुझे प्यार क्यों नहीं हो रहा यार, क्योंकि प्यार में पड़े हुए इंसान को इस गाने को सुनने में कितना मजा आता होगा सोचो। इतना प्यारा लिखा है जावेद साहब ने, इतना रोमांटिक गाना, और ऊपर से ये जो मेलोडियस ट्यून है ना इस गाने की, कुछ कुछ होता है यार, और ये राहुल तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पितारा। और अब चलो अपने दिल की धड़कनों को समझने के बजाय कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, और वो है कुछ धुने। So basically, it's time for मानना मान करो गानों की पहचान, जहाँ पर दो गानों की धुने में

और आज के दोनों मिक्सर्स में एक खास बात है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हिंट के तौर पे ये खास बात बता दी जाए कि ये दोनों ही गाने ना बॉलीवुड के दिलों के बादशाह के हैं। अब गेस करके बताओ ये कौन सा गाना है। डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: The movie Bazigar, इसने हमारा दिल जीत लिया था। लेकिन क्या आपको पता है, हमारा दिल जीतने से पहले ये मूवी हॉलीवुड में भी काफी दिल जीत चुकी थी।
2: मिर्ची, Thugs of Filmistan.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, not exactly Bazigar, but actually the story जिससे Bazigar inspired थी, that movie is A Kiss Before Dying, जो 1991 में रिलीज हुई थी, और Bazigar 1993 में रिलीज हुई थी। In fact, A Kiss Before Dying के अंदर इतने सारे ऐसे सीन्स हैं जो Bazigar में कट कॉपी पेस्ट किए गए हैं। लेकिन इसका एक और रीजन हो सकता है। Well, the reason is कि actually there was this novel जिसका नाम था A Kiss Before Dying, और ये जो दोनों ही फिल्म हैं, यानी A Kiss Before Dying and Bazigar, ये दोनों ही उस नॉवल से इंस्पायर्ड स्टोरीज हैं। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि दोनों ही स्टोरीज एक जैसी दिखती हैं, लेकिन जो सीन्स हैं एकदम कट कॉपी पेस्ट किए गए हैं। अब उसका क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर तो मामला यही है ना कि उठाया और लगाया, क्योंकि यार ठीक है स्टोरी सेम है बिकॉज राइटर एक है, लेकिन डायरेक्टर्स तो अलग अलग थे। खैर जो भी कहो, मेरा तो सॉफ्ट कॉर्नर ही है यार बाजीगर की तरफ, बिकॉज इट वॉज शाहरुख खान भाई इस फिल्म के अंदर। हाउ कैन आई डिसाइड नॉट टू लाइक दिस फिल्म? नेवर एवर, पाप है ये मेरे लिए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हाँ, आज के टाइम पर देयर इज अ ड्रॉइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, लाउंज, लेकिन पुराने घरों में इतने फैंसी टर्म्स यूज नहीं हुआ करते थे बॉस। सीधे सीधे नाम थे हर कमरे के।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड बैक इन द ओल्ड डेज ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कमरों के साथ भी हुआ करता था कि जो काम वो कमरा किया करता था ना, वैसा ही नाम उस कमरे को दिया जाता था। जैसे कि जहाँ खाना खाते थे वो खाने वाला कमरा था, जहाँ टीवी देखते थे वो टीवी वाला कमरा था, जहाँ मम्मा डैडी रहा करते थे वो मम्मा डैडी का कमरा था, और नानी के यहाँ तो भाई फ्रिज वाला कमरा, बिस्तर वाला कमरा और गेहूं वाला कमरा भी हुआ करता था यार। यानी कि जैसा कमरा हुआ करता था, जो उसमें काम हुआ करता था, वैसा ही उसका नाम हुआ करता था। ये लिविंग रूम, लाउंज, डाइनिंग रूम, ये इतने फैंसी फैंसी नाम नहीं हुआ करते थे कमरों के। लेकिन फिर भी ना, कभी पता ही नहीं लगा कि हमने कैसे फ्रॉम खाने वाला कमरा टू डाइनिंग रूम का जो टर्म है ना, वो अपनी जिंदगी में अपना लिया। कैसे ये ट्रांजिशन हुआ, और जिसमें हमें पता भी नहीं लगाया कि हमें मुश्किल हुई थी कि नहीं हुई थी जब ये ट्रांजिशन हो रहा था हमारी लाइफ में। क्योंकि बचपन से तो हमारी आदत थी यार, अगर कोई चीज ढूंढनी होती थी जो कि टीवी वाले कमरे में रखी होती थी, तो एक आवाज आती थी कि अरे मेरी चप्पलें कहाँ है, तो अगला कहता था अरे टीवी वाले कमरे के बाहर ही तो उतारी थी तूने। एंड इट वॉज इजी टू फिगर आउट स्टफ। अब अगर कोई तब बोलता ना कि लाउंज के बाहर तो उतारी थी तूने, तो सब गोल हो जाते कि ये कौन सा कमरा आ गया यार हमारी जिंदगी के अंदर। वाकई में यार, कमरे में कमरा, कमरे में हम, इतने रंगीन थे ये नाम की कमरों के नाम में भी ये भरते थे दम। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर जीरो पीरियड,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें शायद याद भी ना हो, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं भूले, क्योंकि तुम हमारी जिंदगी में जीरो नहीं, हीरो थे। जब भी स्कूल की घंटी सुबह सुबह बजती थी ना, तो हमारा दिल अगले 8 पीरियड्स की थकान से पहले ना तुम्हारी आस में ही बैठा रहता था। तुम बाकी पीरियड्स जैसे नहीं थे, ना कोई किताब, ना कोई लेसन्स, ना कोई बोर्ड पे रटा रटाया लेक्चर। तुम तो जैसे स्कूल के बोरिंग दिन में आई एक सांस की तरह थे। कभी तुम म्यूजिक की मस्ती बन जाते थे, कभी तुम लाइब्रेरी की किताबों में सैर करवाते थे, तो कभी मैदान में खुलकर खेलने का मौका देते थे, तो कभी क्लास टीचर से गप्पे लड़ाने का मौका भी मिल जाया करता था तुम्हारे जरिए। कुछ बच्चों के लिए तो तुम होमवर्क पूरा करने का एक बड़ा ही सीक्रेट सा गिफ्ट थे, तो कुछ के लिए तुम वो वक्त थे जिसमें की दोस्ती और गहरी हो जाती थी। याद है वो दिन जीरो पीरियड, जब रिपब्लिक डे की परेड की तैयारी के लिए तुम्हारे टाइम पर ही हम स्कूल ग्राउंड में जमा होते थे, या फिर वो दिन जब किसी टीचर की अचानक तबीयत खराब हो जाती थी और वो एक्स्ट्रा क्लास लेने से मना कर दिया करते थे और हमारी क्लास कैंसिल हो जाया करती थी, तो तुम्हारे बिना एक और खेल का मौका मिल जाया करता था हमें। तुम्हारी कोई तयशुदा पहचान नहीं थी यार, पर शायद इसीलिए ही तुम सबसे प्यारे थे। जब भी कभी तुम्हारा जिक्र होता है और कोई बोलता है जीरो पीरियड, तो एक मीठी सी मुस्कान खुद ब खुद चेहरे पर आ जाती है। तुमने हमें सिखाया कि हर टाइम पढ़ाई जरूरी नहीं होती, कभी कभी बस जीना और दोस्तों के साथ खुलकर हंसना भी जरूरी होता है। अब जब जिंदगी असल जिंदगी के पीरियड्स में बढ़ चुकी है ना, तो तुम्हारी याद और भी गहरा जाती है तुम्हारे उन्हीं हंसी ठिठोली वाले पलों के लिए। तुम्हारी पुरानी दोस्त जो अब भी जीरो पीरियड को बहुत मिस करती है, और शायद तुम्हारी वजह से ही जीरो आज भी हमारे लिए हीरो ही है। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जाने दो या जाने ना का राशिद अली की आवाज में ये जो गाना है ना, इट्स सच अ सनशाइन सॉन्ग। कैसेट के साइड बी का दूसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
3: कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो इल्ज़ाम ना लगता है।
1: देखो म्यूजिक तो इसका है ही पेपी, बट जो इसके लिरिक्स हैं, दे आर आल्सो सनशाइन यार। मतलब जहां एक तरफ जो दिल टूटने की, दिल दुखने की, जुदाई की बात की गई है, तो दूसरी तरफ देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ एवरी टनल, ये बात भी कही गई है, विच स्पीक्स अ लॉट कि यार अगर हमारे साथ लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है ना कभी, That is not the end of life, क्योंकि उसके बाद एक नई शुरुआत भी तो होती है, जो कि इन लाइन से कितना क्लियर है। और अब ये सनशाइन सॉन्ग मैं आपके लिए लगाते हुए जा रही हूँ और आपसे कह रही हूँ कि हमें रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा अगर मुझे कहीं ढूंढना है ना, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बाय द नेम मिर्ची सारा। यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

एक पुरानी फिल्म है नाइट इन लंदन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म की काफी शूटिंग लंदन में हुई है, हांगकांग में भी हुई है, लेकिन फिल्म में ना कुछ सीन्स जो ऐसे दिखाए गए हैं कि हांगकांग में है वो एक्चुअली इंडिया में है, क्योंकि उनमें जो गाड़ियां इस्तेमाल की गई हैं उनमें इंडियन नंबर प्लेट है। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडियन गाड़ियां हांगकांग उठा के लेके गए होंगे, वो ऐसा हुआ होगा कि शूटिंग से वापस आ गए होंगे, फिर कुछ चेंजेस हुए होंगे, हो सकता है कुछ सीन्स दोबारा शूट करने हो, तो उन्होंने सोचा होगा इंडिया में ही शूट कर लेते हैं, फिल्म में हांगकांग बता देंगे, किसी को क्या पता चलेगा। ठीक है यार, हो जाता है। चलो अभी इसी फिल्म का एक अति रोमांटिक गाना हम सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

किशोर कुमार जी ने अपने करियर में कई कारनामे, कई ब्रिलियंट काम किए हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक कारनामा ये भी होता था कि उनके गाने उन्हीं के गानों से कम्पीट करते थे, जैसे कि 1985 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में, मतलब जो 1984 की फिल्में थी 1985 में अवार्ड्स हुए थे, उसमें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में सारे नॉमिनेशन किशोर कुमार के थे, वो भी एक ही फिल्म शराबी के। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, फिर दे दे प्यार दे, फिर इंतहा हो गई, उसके बाद मंजिलें अपनी जगहें। No prizes for guessing, award तो किशोर कुमार को ही मिला। और किस गाने को मिला? इस गाने को जो हम सुनने वाले हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mirchi. It's hot. Purani Jeans with Charu. Only on Mirchi.

0: पता है लता मंगेशकर जी ने एक बार किशोर दा का इंटरव्यू लिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस इंटरव्यू में किशोर दा ने शेयर किया था कि कैसे उनकी और लता जी की पहली मुलाकात हुई थी लेट 40s में, जब ये दोनों एक ही स्टूडियो जा रहे थे एक डुएट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: हमारी तुम्हारी मुलाकात कैसी हुई थी? तुम ट्रेन में आती थी, मैं भी ट्रेन में आता था। पहली मर्तबा जब तुम मिली थी, तुमने मुझे ऐसे देखा था, मैंने तुम्हें देखा, फिर तुम उतरी, मैं भी उतरा, तुम टांगे में बैठे, तुमने मुझे देखा, मैं भी टांगे में बैठा, फिर तुम पहुंची बॉम्बे टॉकीज के दरवाजे पर, मैं भी वहां पहुंचा। तुमने सोचा ये फॉलो कर रहा है, क्या बात है, कौन है? फिर हम दोनों चले गए और हम तक जिद्दी के जाने जा रहे
0: हैं। वैसे ये 1948 की जिद्दी फिल्म, इसमें किशोर दा का पहला सॉन्ग एज प्लेबैक सिंगर रिकॉर्ड हुआ था और लता जी के साथ उनका पहला डुएट भी रिकॉर्ड हुआ था। खैर, इन्हीं दोनों का एक और सुंदर सा डुएट यहाँ पर सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुराने गानों में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत यूज होता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था अकॉर्डियन। और एक ना एस डी बर्मन साहब का गाना है चुपके चुपके फिल्म का, सारे गामा गीत पहले बना था उसका, एक ये अकॉर्डियन का पीस सुनो आप। याद आया ऐसा सा ये पीस किसी और गाने में भी यूज हुआ है, वही गाना जो हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। इजाजत फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज्ड बाय आर डी बर्मन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

Mirchi, it's hot. Purani jeans with Charu, only on

रात्रि फिल्म्स की 1989 की ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में लीड रोल के लिए, हीरो के रोल के लिए पता नहीं कितने सारे लोगों को कंसिडर किया गया था। संजय कपूर, अनिल कपूर के जो छोटे भाई, दीपक मल्होत्रा वो मॉडल जो लम्हे फिल्म में जिनका रोल था श्रीदेवी के ऑपोजिट, फिर फराज खान वो जो 1996 की फरेब मूवी में भी आए थे। इनको तो शायद साइन भी कर लिया गया था बट ये बीमार हो गए थे तो इनको फिर फिल्म छोड़नी पड़ गई थी। अच्छा, मनोज कुमार साहब के बेटे कुणाल गोस्वामी, उन्होंने तो इस फिल्म के लिए ऑडिशन भी किया था लेकिन फिर बाद में खुद ही मना कर दिया। देन विंदु दारा सिंह, उनको भी शायद साइन कर लिया गया था, और तो और पीयूष मिश्रा साहब, उनको भी कंसिडर किया गया था, लेकिन फाइनली आना था सलमान खान ने, वो आ गए, उनका टाइम भी आ गया सुपरस्टार बनने का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे ये बात बड़ी अमेजिंग लगती है कि पुराने गाने इतने अमेजिंग हैं कि जैसे गानों में से गाने निकल आते हैं। मतलब कोई भी लफ्ज आप पकड़ लीजिए, उसमें कोई गाना निकल आता है। जैसे लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, ये गाना जो हमने सुना, तो अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अच्छा ये जो गाना है फिर, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों से हम ले लेंगे गाना कौन सा, आंखों आंखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो, फिर बाहों से बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम। नाम से कौन सा गाना सुनेंगे, ये वाला। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, साथ ही रखना छोड़ना नहीं, ठीक है। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

बदनामी पर एक बहुत ही सही शेर है अकबर इलाहाबादी साहब का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं, वो अमर अकबर एंथनी वाले अकबर इलाहाबादी नहीं, काफी महान शायर रहे हैं अकबर इलाहाबादी। उनकी लाइन्स हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अच्छा, भूलने पर भी कुछ लाइन्स हैं, पर ये बहादुर शाह जफर साहब की हैं। तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची, सुनते रहिए मिर्ची।

0: भाई पुरानी फिल्मों में जहाँ हीरोइंस अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होती थी, जहाँ अक्सर उनको फिल्मों में बहुत अच्छी सीधी सादी मॉरल्स वाली दिखाया जाता था, वहाँ पर कुछ हीरोइंस ऐसी थीं जिन्होंने कुछ बोल्ड चॉइसेस भी की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ऐसी ही एक एक्ट्रेस माला सिन्हा जी। काफी फिल्मों में इन्होंने इस तरह के रोल किए जो उस टाइम के हिसाब से टैबू थे। जैसे दो फिल्में तो मुझे इनकी याद आ रही हैं, धूल का फूल और धर्मपुत्र, जिसमें इनके रोल में ये शादी से पहले अपने रिलेशनशिप में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अच्छा, एक और इनकी फिल्म थी गुमराह, जिसमें शादी के बाद ये अपने एक्स लवर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाती हैं। अपने इस थोड़े वैम्पिश रोल के बारे में सुनिए, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: वो बहुत बारीकी थी उस रोल में, गुमराह के रोल में। थोड़ा भी अगर उसका एक्सप्रेशन, उस लड़की का एक्सप्रेशन में, या चलने में, या देखने में, या बोलने में, या डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा भी अगर फर्क पड़ जाता तो वो कैरेक्टर बहुत ही गंदा लगता या वैम्प हो जाती। पर चोपड़ा साहब ऐसे डायरेक्टरों में से हैं जो कि वाकई कैरेक्टराइजेशन को समझते हैं और किस तरह से उसको सलीके के साथ ले जाए, पेश करे, उनमें वो खासियत है। इसलिए वो रोल अच्छा ही लगा, आंखों को खटका नहीं।
0: तो चलिए इसी फिल्म से खूबसूरत गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

भाई आरडी बर्मन और लिरिसिस्ट गुलशन बावरा काफी अच्छे दोस्त थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो एक बार आरडी बर्मन गुलशन बावरा के यहाँ मीटिंग करने आए, तो गुलशन बावरा जी की वाइफ अंजू जी, उन्होंने इनसे पूछा कि खाने में क्या बनाऊं। तो आरडी बर्मन ने एक बर्तन उठाया, उसे अपने हाथ से बजाने लगे और गाने लगे कि सरसों का साग बना दे अंजू, मक्की की रोटी बना दे अंजू। और इसी ट्यून पे फिर ये गाना बना जो हम सुनने वाले हैं, 1978 की फिल्म कस्मे वादे का टाइटल ट्रैक, जो ऑफ कोर्स लिखा है गुलशन बावरा ने, कंपोज किया है आरडी बर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए।
1: हो जाए।

0: लेट 80s की एक बहुत ही पॉपुलर जोड़ी थी, ऋषि कपूर एंड श्रीदेवी। ऋषि, सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नगीना एंड चांदनी में क्या हिट हुए थे ये दोनों। अच्छा, एक बार कपिल शर्मा शो पे ना ऋषि कपूर जी ने शेयर किया था कि नगीना फिल्म के दौरान जब श्रीदेवी और ये पहली बार साथ में शूटिंग कर रहे थे तो एक क्या इंसिडेंट हुआ था।
1: एक दिन मुझे याद है कि एक शॉट चल रहा था, फिल्म की मैगजीन होती ना वो रन आउट हो गई, तो लाइट्स जैसे ये सब लाइट्स ऑन है और वो 2 मिनट लगता है चेंज करने को, मैगजीन निकाला मैगजीन और कैमरे में लगाया मैगजीन। तो वो जो 2 मिनट का डिस्कम्फर्ट होता है कि एक्टर एक्ट्रेस खड़े में, लाइट्स चालू है, सब साइलेंस है सब जगह, और वहाँ क्या कहें। तो मुझे श्रीदेवी जी ने कहा कि सर आई सॉ खेल खेल में 4 times, बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं क्या रिटर्न कॉम्प्लीमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन सी पिक्चर मैंने देखी है। कमाल की एक्ट्रेस, कमाल की एक्ट्रेस।
0: क्या बात है, चलिए दोनों पे पिक्चराइज्ड ये सुपर रोमांटिक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Pirani Jeans. Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच-सच देना। डन
2: कैन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आए दिन बहार के आय हाय हाय हाय हाय, इस फिल्म का गाना हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी ना, तो आशा पारेख जी जो इस फिल्म की हीरोइन थी, उनके लिए वो दिन खास बहार के नहीं थे क्योंकि धर्म जी के साथ वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी और धर्म जी सेट्स पर अल्कोहल कंज्यूम करके आते थे, जिसकी स्मेल आशा जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई बार धर्म जी अल्कोहल की स्मेल को एक स्ट्रॉन्गर स्मेल से हटाने मिटाने की कोशिश करते, जैसे कि बहुत सारा प्याज खा लिया, जो आशा जी को और भी ज्यादा परेशान करता। तब आशा जी ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई आप ऐसा ना करें, प्लीज प्लीज प्लीज। उसके बाद धर्म जी ने जो फिल्म के सेट्स पर न पीने की प्रतिज्ञा ली, उसको भरपूर निभाया। इनफैक्ट हिल स्टेशंस में जहां ये शूट करते थे, कई बार ऐसा धर्म जी का दिल डोला कि वो कुछ कंज्यूम कर लें, लेकिन क्योंकि उन्होंने आशा जी को प्रॉमिस किया था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी आप फिलहाल एक काम कीजिए, मुस्कान को ले जाइए कान तक और कान रखिए मिर्ची पर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

मनोज कुमार साहब के बेटे कुणाल गोस्वामी, इनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो इनकी डेब्यू फिल्म थी 1983 की फिल्म कलाकार, तब ये मात्र 18 साल के थे। और एक इंटरव्यू में इन्होंने शेयर भी किया था कि इनको बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया गया। सीन कुछ यूं हुआ कि जब ये 16 साल के थे तभी ये 6 फुट के हो गए। तो फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स जब इनके घर आते थे इनके फादर मनोज कुमार साहब से मिलने, तो लड़के को देखकर बोलते थे कि इसको फिल्मों में लॉन्च कर देते। ये उनसे बचते बचाते छुपते छुपाते यहाँ वहाँ से घर से निकल जाते थे, लेकिन किसी तरह फिर पकड़ में आ गए। थोड़ा प्रेशर बढ़ गया क्योंकि तब और स्टार सन्स भी लॉन्च हो रहे थे, संजय दत्त, कुमार गौरव, सनी देओल, तो इनको भी लॉन्च कर दिया गया। लेकिन ये इतने यंग दिखते थे, इतने छोटे दिखते थे, समहाउ ऑडियंस ने इनको एज लीडिंग हीरो एक्सेप्ट नहीं किया। खैर जो भी है, इस फिल्म का ये गाना बहुत सही है जो हम फिलहाल सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं

0: अगर हर इंसान अलग होता है तो उसकी चॉइसेस भी तो अलग होंगी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, लेकिन यार इसी चीज को लेकर तो अक्सर

0: अगर हर इंसान अलग होता है तो उसकी चॉइसेस भी तो अलग होंगी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, लेकिन यार इसी चीज को लेकर तो अक्सर इंसान अलग होता है तो उसकी चॉइसेस भी तो अलग होंगी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, लेकिन यार इसी चीज को लेकर तो अक्सर आपकी

0: हमेशा कड़वा ही होता है।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एंड माय डियर बाबू मोशाय, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो सच से थोड़ी दूर दूर सी भी रहती है, मतलब नॉट ऑलवेज ऑफ कोर्स, बट कई दफा ये हुआ है कि बहुत सारी फिल्में जो हैं वो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड रही हैं, या फॉर दैट मैटर कुछ अलग फिल्मों से या शोज से इंस्पायर्ड रही हैं, बट उस पर्टिकुलर फिल्म या शो के मेकर ने इस बात को डिनाई किया है, इस सच को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू इस सच का सामना आपको भी करवाऊं। सो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी राजनीति, नंबर दो पे हमने बात की फिल्म वो लम्हे के बारे में, नंबर तीन पे आंधी की डिस्कशन हुई, अब नंबर चार पे बात करना चाहूंगी शो फर्जी के बारे में, जो साल 2003 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राजन डीके, जिसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, भुवन अरोड़ा और के मेनन लीड रोल्स में थे। वैसे ऑल इन ऑल ये कहानी क्या थी, एक आर्टिस्ट की कहानी जो पैसे बनाने के लिए अपने टैलेंट का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, राइट? एंड इफ यू थिंक यू हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर, देन लेट मी रिमाइंड यू, ब्रेकिंग बैड देखी है या नहीं आपने? वहां भी तो यही कांड चल रहा था। वेल, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ पा रहा है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच ब्रेकिंग बैड फर्स्ट एंड देन फर्जी से सीरीज को कनेक्ट करने की कोशिश करना। फिलहाल तो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर पांच पे फिल्म गुरु के बारे में, जो मनी रत्नम की पेशकश थी इन द ईयर 2007, जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय लीड रोल्स में थे, अलोंग विद मिथुन चक्रवर्ती, आर माधवन एंड विद्या बालन। वैसे ये कहानी फोकस्ड थी ऑन अ विलेजर जो एक बिजनेस टाइकून बन जाता है, वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट टाइकून्स इन द कंट्री। इंटरेस्टिंगली द मूवी वॉज र्यूमर टू बी बेस्ड ऑन धीरू भाई अंबानी, हाउएवर मनी रत्नम ने बोला कि भाई ये सारे क्लेम्स जो है ना वो बकवास है एंड दिस मूवी इज अ फिक्शन story. Nevertheless, there were some striking similarities between the tycoon and the film. लेकिन क्या करें, सच कड़वा होता है बाबू मोशाय, जिससे लोग दूर ही भागना चाहते हैं। वैसे आपकी क्या राय है इन मूवीज और शोज के बारे में, डू लेट मी नो अबाउट दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करके। मीनवाइल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Energy. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. Yeah. You already know what it is.